说把那骨头嘛看他给给嘛发出把那个布鲁库那个人皮呢别拉拉干卡穆沙穆西来大哥拉两处高拉过八处我们骨头卡进去了苦是可以哈西卡可以嘛奥拉哦ये ता लीशा ये तारा पाशा कौती छीदाये कौती टूटाये।

तारी कलम धान बकुरो पदै बकुरो तिख तिख तारी कलम यो धान रे पुरो टपक्कै मोर ला तंदिरी।